0: 11-year-old Rishabh Patole was riding on a motorcycle with his father and sister in Pune last evening. The bike hit a broken stretch of road, skidded, fell into a pothole, and Rishabh fell directly under the wheels of a passing tempo truck. He died on the spot, 11 years old. A child killed on a road he must have been driven on hundreds of times. And the timing makes this even more infuriating, because just as Rishabh died, and that's him you see in these pictures, Maharashtra's Deputy Chief Minister Eknath Shinde was ordering municipal corporations in the state to make roads pothole-free before Ganesh Chaturthi next month. In the Chakan region, the promise is even more specific: fix all potholes by the 31st of August. But why does it take a festival deadline to make safe roads an emergency for the government? Because look at what else Maharashtra's transport machinery is busy doing right now. From today, by the way, RTOs are checking whether auto and taxi drivers can speak Marathi. Fail to acquire working knowledge and you can ultimately lose the authorization that allows you to earn your livelihood. The government says this is about passenger convenience and respect for Maharashtra's language. But is this really your priority when children like Rishabh are dying in potholes on your watch? Is your priority policing livelihoods, especially in a state where linguistic chauvinism has repeatedly spilled into intimidation and violence? You have to ask whether passenger convenience is really the whole story. Please consider these facts tonight. The Government of India's data says potholes cause on an average 75 accidents and kill just under 50 people in Maharashtra every single year. So tonight, this isn't Marathi versus non-Marathi. It is about totally misplaced priorities of our governments. Language politics generates headlines, applause, and political mileage. Filling potholes is boring, invisible, governance. Until an 11-year-old called Rishabh Patole falls under a truck. Maybe government needs to spend less energy policing the language of the person driving you and much more energy making sure the road beneath you doesn't end your life. And on this very, very tragic day, I'm joined live by Sandeep Patole, the father of little Rishabh, who lost his life in that accident. Sandeep ji, sabse pehle, Rishabh ke jaane ka hume behad dukh hai. Is waqt aapse baat karna bhi bahut mushkil hoga. Lekin agar Sandeep ji, aap bata sakte hain, us din aakhir hua kya tha?
1: यस तो मैं संदीप पाटोले एज ए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अभी इंजोड़े में विप्रो कंपनी में एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और पिछले 15 सालों से मैं इधर रहता हूँ. तो मैं एज ए रेगुलर रूटीन कल भी उसी तरह अपनी बेटी और बेटे को लेके ट्यूशंस के लिए 6 बजे के आसपास जो कि भद्रेशील साइड में है, भद्रेशील साइड एक प्रोजेक्ट है भद्रेश का, उधर जा रहा था. तो जैसे ये घर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास. तो मैं कल भी उसी तरह जा रहा था 6 बजे अपने बच्चों को ट्यूशन में छोड़ने के लिए. उस टाइम एक मैं लगभग 10-15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा था. लेकिन क्या हुआ कि मैं एक साइड से जा रहा था तो बीच में ही एक खराब रोड और गड्ढे की वजह से एक टेम्पो जो आयशर टेम्पो है वो मेरे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गया और उसने थोड़ा सा टिल्ट किया और मेरी तरफ उसने टर्न मारा. तो गड्ढे की वजह से उसका टेम्पो वाइबल हुआ और वो सीधा मेरे बेटे को मेरे बेटे के दिमाग पे इधर थोड़ा सा एकदम सा धक्का लग गया और मेरी बाइक स्किड हो गई वहां पे. और हम तीनों भी मतलब मैं, मेरी बेटी और बेटा तीनों भी बाइक स्किड होके गिर गए और उसी में उसको बहुत नाक और कान से बहुत सारा खून निकल रहा था. तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने खुद को सवार लिया, मुझे भी थोड़ा लगा है. लेकिन मैंने देखा कि उसको बहुत सारा खून आ रहा है तो मैंने उसको बाजू में लेके आया, उठाया और फिर हेल्प के लिए पुकार रहा था. तो एक दो लोगों ने आके उसको गाड़ी निकाली और मेरे को आगे लेके गए साइड में. और उसके बाद उन्होंने मैं चिल्लाता रहा कि इट्स मींस ब्लडिंग बहुत हो रहा है तो उसको कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत है, कोई तो हेल्प करो. तो मैं लगभग 3-4 मिनट यही करता रहा था. लेकिन अफसोस की कोई भी आगे नहीं आ रहा था. लेकिन लास्ट में एक जो कि क्या वाला रहता है ओला या उबर वाला, तो पता नहीं कौन सा था, बट उसने इंसानियत के नाते वहां पे कैब लाके खड़े कर दिए, पूरे पीस में डालो और लेके चलते हैं। तब तक पेट्रोलिंग करने वाले जो दो पुलिस के कर्मचारी थे वो उधर आ गए और हमने तीनों ने मिला के उसको, हम तीनों भाई उसमें बैठ गए कैब में और उन्होंने हमें आगे, वो पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले आगे चलते उनको रास्ता तैयार करके मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन उसमें लगभग 20 से 25 मिनट, लगभग 15-20 मिनट के आसपास उतना टाइम तो चला गया और उसका बहुत स्वेलिंग हो रहा था, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उसका वो ये खोख आया था, उसका बेहोश हो गया था। तो बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया और डॉक्टर ने उन्होंने अपना CPR वगैरह वो ट्रीटमेंट चालू कर दी। लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि भाई हम उसका बहुत सारा ये हो गया, हार्ट का रेट लगभग पहले से ही वो उसका हार्ट बंद पड़ पाया है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे 15-20 मिनट के बाद और कोशिश करके उन्होंने लास्ट में मेरे बेटे को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। तो ये अनहोनी मेरे साथ जो हुई है सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो रोड है और जो गड्ढे है, मतलब पुणे में ही नहीं बल्कि सब जगह यही हाल है। और ऐसा है कि गड्ढे भरते हैं तो 5 दिन में उसका उसमें कुछ मिट्टी मिट्टी ही मिला देते हैं लगभग, तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे गड्ढे, अगर आपको देखना है तो आप अभी जाके देख सकते हो रोड की हालत क्या है, कितने गड्ढे, एक तरफ का तो बंद ही है एक तरफ में। और वो इंजोड़ी का IT ट्रैफिक है जो उधर से जाता है जो phase 1 phase 2 की तरफ phase 3 की तरफ जाता है, तो रोज का हाल है। और कोई रोज 12-15 दिन महीने में एक दिन ऐसा इंसिडेंट होते रहता है जो कि बहुत सारे लोडिंग व्हीकल जो रहते हैं जिसको अलाउड नहीं है उस टाइम में, वो भी उधर दिन रात उनका चालू रहता है, जो कि टैंकर्स हो, डिपर हो, डंपर हो या फिर और कोई जो नाव व्हीकल्स है वो हमेशा चालू रहते हैं। इसकी वजह से मासूम लोगों की जाने जाती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को कब जाके वो जगने वाले हैं, कब जाके वो जो भी रूल्स है रेगुलेशन से लाने वाले और आम लोग, ये मेरा ये मतलब अभी मेरे को तो सहानुभूति देने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरा जो बेटा उसमें लॉस हुआ है वो कौन भर के दे सकता है क्या? तो मेरा ये सवाल है आपसे कि प्रशासन और जो भी शासन है उनसे कि भाई आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर दीजिए कि जो अच्छे रोड्स हो, अच्छा जो कि पॉलिटिक रूल्स फॉलो करे और जो भी जिनके लिए रूल्स लगाए वो भी फॉलो करे, तो कुछ ना कुछ जाके बाकी के लोगों को, तो मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाया लेकिन बाकी के लोगों की तो बच सकती है। क्योंकि ये बात आज से आप भी अगर देखते हो तो बहुत बार बार बार बार होते ही रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके उस पर कंट्रोल हो सके। और
0: संदीप जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि गणेश पूजा से पहले सड़कों के सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। ऋषभ के साथ जो हुआ उसके बाद आप इस वादे को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि सितंबर 14 के अंदर अंदर सारे गड्ढे को रिपेयर किए जाएंगे।
1: देखिए वो जो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा है तो उनका तो डेडलाइन रहा होगा, लेकिन अभी क्या है कि मैं मतलब अभी तो मेरे बेटे की जान चली गई ना, तो एटलीस्ट गड्ढे भरे होते ठीक तरह से काम किया होता ठेकेदारों ने या भी जो भी करने वाले इनके अंडर आता है, तो उधर का एक प्रॉब्लम है कि ये रोड करेगा कोई, एक MIDC कोई बोलता है कि MIDC के अंदर है तो MIDC वाले करेंगे और दूसरे बोलते हैं कि ये इसके PMRDA में आता है तो PMRDA वाले करेंगे, तो उनको ही पता नहीं कि कौन कर रहा है कौन मालिक है। और आप अगर उधर जाकर देखोगे तो इतनी सारी बड़ी सोसाइटीज है, गोदरेज है, VTP है, बहुत सारे सोसाइटीज है, उन्होंने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट लिया है, वो बहुत सारा टैक्स भी भरते है, लेकिन उनके बावजूद उनको सिर्फ गड्ढे पानी और उसकी वजह से मच्छर और यही यही रोज का हाल है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से या जो भी वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से उनसे अपील है कि भाई आप एक कुछ ना कुछ तो एक सेंटर पॉइंट निकाल के कुछ ये जल्दी कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को आम लोगों को तकलीफ ना मिले और वो अपना डेली रूटीन है वो ठीक तरह से निभा पाए या फिर ऑफिस या जब भी किसी मार्केट या किसी के किसी भी चीज के लिए उसे जाना हो तो वो ठीक तरह से कर पाए।
0: हम NDTV की तरफ से फिर से हम बताते हैं आपको संदीप जी कि हम सवाल पूछते रहेंगे इस मुद्दे पर और हम रिपोर्ट करते रहेंगे जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉट होल्स जो है, हम सवाल करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू।

0: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanal, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
1: Across the country.
0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
2: Launch control, 0 to 100.
3: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
4: This car makes no sense, yet it makes every sense.
5: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
3: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
7: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right, and Center.
0: Hard facts.
7: War struck country.
0: Hard questions.
7: In the Ukraine.
0: 30 years.
8: Welcome back. Shifting our focus to Maharashtra now. The state's transport minister, Pratap Sarnaik, has now issued a warning to auto and taxi drivers who fail to learn Marathi. He says the drivers will first get a one-month notice followed by three-month suspension, and continued non-compliance could lead to permanent license cancellation. The government is now enforcing the requirement for practical Marathi knowledge among commercial passenger vehicle drivers. But Union Minister Ramdas Athawale has opposed immediate punitive action. He says that creating a Hindi-Marathi dispute is not right. And while drivers should learn Marathi, they should not be punished simply for not knowing the language.
9: जर तुम्हाला मराठी आलं नाही आता 165,000 लोकांना तर मराठी आलेलं आहे समजा पण ह्या पुढे जर तुम्हाला मराठी येत नसेल तर ताबडतोब कोणाचा परवाना रद्द होणार नाही आधी 30 दिवसाची नोटीस दिली जाईल 30 दिवसाच्या नोटीसमध्ये जर तुम्हाला मराठी आलं तर ठीक आहे नाही आलं तर 3 महिने तुमचा जो परवाना आहे तो रद्द करण्यात येईल निलंबित करण्यात येईल परंतु 3 महिन्यानंतर सुद्धा जर तुम्ही मराठी बोलू शकला नाही तर तुमचं लायसन्स रद्द होईल अशा प्रकारचा नियम मी काढला आणि त्या नियमामुळे जर रिक्षा चालकाला टॅक्सी चालकाला अजूनही मराठी शिकायचं असेल तर त्याला ती 4 महिन्याची संधी उपलब्ध होते
10: लगता है कि हिंदी मराठी का विवाद करना बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ रहने वाले हर आदमी को मराठी सीखनी चाहिए आनी चाहिए बात सही है लेकिन जिसको आती नहीं है उसको एकदम ऐसा फोर्स करना ठीक नहीं है ऑटो रिक्शा वाला तो मामूली आदमी है, एक मजदूर आदमी है, थोड़ा ऑटो रिक्शा चला कर 20-30 हज़ार रुपये हर महीना कमाता है। जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर है, टैक्सी के ड्राइवर है, मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन एकदम उसका परमिट रद्द करने की भूमिका ठीक नहीं है।
11: महाराष्ट्र जो है उसके जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, दूसरे भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूसरे दूसरे जगह से आते, उत्तर प्रदेश से आते, बिहार से आते, गुजरात से आते, राजस्थान से आते, मध्य प्रदेश से आते, झारखंड से आते, वेस्ट बंगाल से आते, तमिलनाडु से आते, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनको मराठी आना चाहिए। मैं इस बात के हित में हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए, जो बाहर प्रांतों से भी आते हैं उनको मराठी आना चाहिए, मगर उसके लिए रवाज देना चाहिए, लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, एनजीओज ने कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए।
8: Meanwhile, an 11-year-old boy, Rishabh Patole, was killed in a tragic road accident in Pune's Bilavadi Mulangi area on Monday evening. According to initial reports, the boy was travelling on a motorcycle with his father and sister to attend tuition when the bike skidded after hitting a pothole. The 11-year-old fell onto the road and came under a truck that was approaching from behind. He died on the spot. The accident was captured on CCTV and a large crowd gathered at the scene following the incident. Local residents have now expressed anger over the poor condition of the roads and potholes in the area.
9: काल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया गड्ढों के लेते हुए, बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से, नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है। इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे हैं बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है।
12: There is a protest called by all the local residents and employees here on 6th of September, and we will wholeheartedly support that protest.
13: लोग अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, वो कुंभ मेला प्राधिकरण हो, वो अधिकारी बाकी कोई भी हो, सबकी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो।
8: Meanwhile, Pakistan's political crisis has now taken a dramatic turn with the Supreme Court stepping in over the health of the former Pakistan Prime Minister Imran Khan. In a major intervention, the court has now ordered Khan to be moved out of the Adiala jail and transferred to Al Shifa International Hospital for urgent medical evaluation. More in the next report.
14: For months, questions have been mounting over the health of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan inside Adiala jail. Now, Pakistan's Supreme Court has stepped in. A 3-member bench has ordered authorities to shift Khan from Adiala jail to Shifa International Hospital within 48 hours. The court has directed that he should remain there until at least the next hearing on September 16th. The intervention follows fresh concerns over Khan's physical condition. A medical report submitted to the court indicated fluctuating and uncontrolled blood pressure, palpitations, headaches, and anxiety. Jail authorities have linked some of the anxiety to restricted contact with his family. However, one of the most serious concerns has been his

0: Now, UPT, focus will now be on new allies and the member parliaments finding a place in the government or not. Let's take you to Maharashtra now, from where we have a devastating piece of news coming to the fore. Pune's killer potholes have claimed a young life. 11-year-old Rishabh Patole was on his way to tuition with his father and his sister when their scooty skidded after hitting a pothole near Balewadi in Pune. Now, Rishabh fell onto the road and was crushed by a truck coming from behind. A heart-wrenching CCTV captures the horrific moment. The tragedy has also now triggered fresh anger over Pune's pothole roads. The government, meanwhile, has said that it ordered roads to be repaired before the festival season, and civic bodies had already been instructed. The tragedy has sparked fresh outrage coming in from the opposition, with the NCP SP Supriya Sule asking who should be held responsible for the child's death.
1: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया गड्ढों के लेते हुए. बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से. नासिक हो, ठाणे हो, पुणे हो या चाकन हो, सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, यह हकीकत है. इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे ही बुझाने चाहिए, और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका, हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है.
2: इट्स द सेम ऑन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन फैक्ट, एंड दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर इन पावर. एंड इफ यू गो टू राइट फ्रॉम अर्बन टू रूरल, यू गो एनीवेयर, यू आर टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट ऑफ पुणे बालेवाड़ी. There is an incident, you just talk about when Kumbh is going to be there in Nashik. 39,000 crores rupees have been given. And nearly 9 people have almost already died. Some are seriously injured. You won't believe a single district where such incidents has not happened. Mumbai, Ahmedabad road, you name a road and you'll find the potholes over there.
3: जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो क्या इंसान नहीं है? वो जानवर है. इस तरह से एक्सीडेंट होकर रास्ते में स्लिप होकर टायर के ट्रक के टायर के नीचे आकर बाप के नजरों के सामने बच्ची की जान जाती है, इसका मतलब इसके लिए सरकार दोषी है. सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर भी सरकार करके जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी फिक्स करके हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं.
0: Well, let's now take you to Karnataka. Bengaluru's roads are facing a massive pothole problem despite thousands of crores being spent on repairs. On one key industrial corridor alone, over 300 potholes have now been reported. My colleague Ritu Rajpurohit brings us this ground report from Bengaluru. Take a look.
4: The Silicon City of India is famous for its IT sector, but its roads have become equally infamous for their poor condition. Thousands of potholes scar the city, especially a crucial industrial corridor that houses MNCs and connects more than 1,000 industrial units and warehouses. This 7-kilometer stretch alone has more than 300 potholes. The starting point of this industrial corridor has thousands of vehicles that use this stretch every single day. But potholes dominate the entire road.
5: पूरा रोड पूरा बहुत कच्चा है, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है. देखिए पूरा गड़ा हो गया है, पानी आ रहा है, गाड़ी में मार पड़ता है.
4: For years, crores of rupees have been allocated for road repairs and resurfacing.
6: इधर जाने आने का हम लोग भी तकलीफ होता है, एक्सीडेंट भी होता है. मेरा सामने ही है, दो तीन बार ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया है बाइक वाला लोग का. इधर रोड क्रॉस करने का टाइम में भी नहीं होता है, गाड़ी चलाने के टाइम में नहीं होता है. इधर इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, वो जाने का टाइम में इधर से मैं भी गिरा है, एक दो बार मैं भी इधर से गिरा है. सरकार को ये भी विनती है, वो थोड़ा रोड सही कर देगा तो अच्छा लगता है, और गाड़ी लोग जो जाता है एक्सीडेंट कम हो सकता है.
4: But the numbers tell their own story. The civic body has spent 7 crore rupees in 2023 and 2024 and 12.25 crores between 2024 and 2025 just on pothole filling. In 2025, the spending scaled up sharply, with 750 crore rupees announced for potholes, 2,200 crore rupees for road repair and construction, and another 65 crore rupees for pothole repairs. The city also spent 694 crore rupees on blacktopping, 1,241 crore rupees on road relaying, drains, curbs and footpaths, along with an additional 900 crore rupees on Ward Road resurfacing. By the end of 2025, the cumulative road expenditure was estimated at 5,500 crore rupees. And in June this year, another 2,000 crore rupees was promised for road upgrades.
7: In June, the state government sanctioned rupees 2,000 crore to fix Bengaluru roads. Now, will this really end the pothole menace? That, of course, only time will tell us. Now, even as that, we continue to be in the industrial corridor at the end point, that is Jigni. You continue to see how that in multiple roads you will find the street lights are in poor condition. There are places where there are footpaths that are missing. Even if there are footpaths, then they are also seen in a broken stage at this point in time. But of course, the commuters are finding it quite difficult to navigate through these pothole ridden roads. That's something, a bumpy ride that one really is experiencing, and also a back pain ride as well. Now, what the industrial corridor is also arguing here, that when they contribute good enough for the state's economic growth, what are that they're really getting in return are these pothole ridden roads. Now, of course, you see, there has been all that, the argument that's coming in from the locals is also that whenever there are potholes, of course, there are temporary fixes that are done, which does not last for long when the history, before the history basically repeats in itself.
4: At night, pedestrians say they are afraid to walk here. And when it rains, waterlogging adds another layer of danger for motorists.
8: Avaru inform maadi idella hakbeku, but idella hange ide, tumba varshadindane ide, adu yaru action tagolta illa alla.
9: But pedestrian walker safety bagge en helik bayistira inta potholes road gal iddaga?
8: Accidents tumba agutte illi, eshton jana bidogtare.
4: From residents to employees of the industrial hub, everyone is asking the same question. When will Bengaluru finally get freedom from bad roads? This is a city that drives Karnataka's economy. But on its industrial corridors, basic infrastructure continues to struggle. With Ritu Rajpurohit in Bengaluru for NDTV.
0: Well, let's now take you to Tamil Nadu. TVK's pitch for Vijay as Prime Minister is now gaining momentum after Arthur Arjun called for a Tamil Prime Minister. Another TVK Minister, Sarat Kumar, has now endorsed Vijay as the next Prime Minister. Backing Tamil Nadu Chief Minister Vijay, TVK Minister Sarat Kumar said that Chief Minister works round the clock for the people, day in or day night, AM or PM. There is no break even when it comes to his duty, which is why he believes that Vijay should be the next Prime Minister.
10: இதயத்திலும் இல்லத்திலும் கோட்டையிலும் சிஎம் ஆகும் இருக்கும் எங்கள் தலைவா, நாளைய பாரதத்தின் பிஎம் நீங்கள்தான். ஏஎம் பிஎம் பார்க்காமல் உழைக்கும் எங்கள் சிஎம்ஏ, நாளைய பிஎம் நீங்கள்தான், நாளைய பிஎம் நீங்களேதான்.
11: இதை குறிப்பிட்டார்கள், 50% இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கு பலன் தானே அப்படின்னு. கிடையாது. 5-6 வட மாநிலங்கள் சேர்ந்தால் ஒரு பிரதம மந்திரியை உருவாக்க முடியும் என்கின்ற நிலை இன்றைய வரையும் இருந்துட்டு இருக்கு. அதை மாற்றப்பட வேண்டும். தென்னிந்தியாவிலிருந்து, ஏன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு பிரதம மந்திரி எதிர்காலத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அதிகாரம் உத்தரப்பிரதேசிக்கோ, பீகாருக்கோ, குஜராத்துக்கு மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலித்தது போல ஒரு நாள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பிரதம மந்திரியாக ஒலிக்க வேண்டும்.
0: Well, NASA's released the sharpest images of a crater carved by a SpaceX rocket crashing into the moon. The Falcon rocket's upper stage slammed into the lunar surface on the 5th of August at nearly 5,400 miles per hour. NASA

0: This is NDTV. When it really matters.
1: Hello, welcome and good morning. My name is Reet Korsan and you're watching NDTV. We've got an action-packed show lined up just for you. But let's first take you through the headlines of the hour. A fresh face-off has erupted over the July 20th two clashes in Delhi. Kiran Rijiju has defended the police action while Rahul Gandhi has alleged brutality and claimed the students were targeted with pellet guns and lathis. After the BJP's organisational reboot, speculation is growing over a possible cabinet reshuffle. With key ministerial berths vacant, the big question remains who will make the cut and who will be out. An 11-year-old boy, Rishabh, has been crushed to death after his bike hit a pothole in Pune. Shocking CCTV visuals have triggered fresh anger over road safety and civic negligence. The chorus for Vijay as a future Prime Minister are now growing louder within his party. Two TVK ministers have backed the pitch, asking why the South should not get its turn at the top post. Let's now take you through the top story of the hour. The July 20 Jantar Mantar protest has now become a big political as well as a legal face-off. Union Minister Kiran Rijiju has defended the Delhi police, saying that there were no deaths, no broken bones and no serious injuries, and that the cops should be praised. But Rahul Gandhi has hit back, accusing the government of lying and alleging that the use of pellet guns and nail-studded lathis against students was present at the protest. Now, the top court, meanwhile, will constitute a high-powered panel to probe into the alleged police excesses and examine FIR against the protesters. The CJI has also underlined the right to peaceful protest while making it extremely clear that those facing serious criminal charges will be dealt with separately.
2: Ek aadmi ka maut nahi hua. Ek aadmi ka haddi nahi tuta. एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है. इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज़्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आ करके उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ. ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते, और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत, छोड़िए सीरियस इंजरी तक, नहीं होने दिया.
3: मोदी सरकार और किरण रिजिजू जी जैसे उनके मंत्रियों ने अहंकार का चश्मा पहन रखा है. उनको पुलिस की पैलेट गन से इंजर्ड बच्चे जो बार बार सभी टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया ने देखे, उन्हें वो घायल नज़र नहीं आते. उन्हें कील गड़ी लाठियों से मारे गए हमारे नौजवान, हमारे बेटे और बेटियां, वो घायल नज़र नहीं आते. उन्हें पुलिस के सिपाहियों और अफसरों द्वारा लड़कियों को थप्पड़ मारते अफसर नज़र नहीं आते. उनको दिल्ली पुलिस और जो उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई थी, उनके द्वारा लड़कियों के फाड़ते हुए कपड़े भी नज़र नहीं आते. उनको बच्चों पर लाठियां और अश्रु गैस चलती नज़र नहीं आती. इसे बोलते हैं सत्ता के अंधे. ये सरकार सत्ता के मद में, नशे में अंधी हो गई है और इनको अर्श से फर्श तक

0: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
1: कुछ इससे भी अनोखा।
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
2: So many payment apps, but which one is safe?
3: Then switch to Bheem. It is completely safe and reliable, and you keep getting rewards as well. You can also get 20 rupees cash back on your first payment above 20 rupees. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: Hindustan mile, Hindustan se.
6: Desh ka tire, JK tire.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: Welcome back. My name is Deep Kaur Sahani. You're watching NDTV. Well, we have some breaking news coming in at this hour. In fact, devastating information coming in from Maharashtra, where Pune's killer potholes have claimed a young life. 11-year-old Rishabh Patole was on his way to his tuition with his father and sister when their scooter skidded after hitting a pothole near Balewadi in Pune. Rishabh fell onto the road and was crushed by a truck coming from behind. A heart-wrenching CCTV now captures the horrific moment. The tragedy has triggered fresh anger over Pune's pothole roads. The government, meanwhile, said that it had ordered roads to be repaired before the festival season, and civic bodies had already been instructed. The tragedy has now sparked fresh outrage coming in from the opposition, with the NCP SP Supriya Sule asking who should be held responsible for the child's death.
1: कल ही एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया गड्ढों के लेते हुए बहुत ही गंभीर शासन है महायुति सरकार के माध्यम से नासिक हो ठाणे हो पुणे हो या चाकन हो सब जगह पे गड्ढों की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है या हकीकत है इसके लिए गड्ढों के बारे में निर्णय लिया गया है कि किसी भी हालत में गणेशोत्सव के पहले पूरे राज्य के गड्ढे बुझाने चाहिए और शासन बहुत ही गंभीरता से गड्ढों को लेके हर महानगर पालिका हर जिलाधिकारी को सूचना कर रही है
2: इट्स द सेम ऑन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन फैक्ट एंड दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर इन पावर एंड इफ यू गो टू राइट फ्रॉम अर्बन टू रूरल यू गो एनीवेयर यू आर टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट ऑफ पुणे बालेवाडी There is an incident, you just talk about when Kumbh is going to be there in Nasik. 39,000 crores rupees have been given. And nearly 9 people have almost already died. Some are seriously injured. You won't believe a single district where such incidents has not happened. Mumbai, Ahmedabad road. You name a road and you will find the potholes over there.
3: Gramin mein log nahi rehte. Wahan kya janavar rehte hain? जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं वो क्या इंसान नहीं है वो जानवर है इस तरह से एक्सीडेंट होकर रास्ते में स्लिप होकर ट्रक के टायर के नीचे आकर बाप के नजरों के सामने बच्चे की जान जाती है तो इसका मतलब इसके लिए सरकार दोषी है सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर भी सरकार करके जिम्मेदार है और जिम्मेदारी फिक्स करके हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं
4: दिस थिंग्स विच आर हैपनिंग इन महाराष्ट्र आर वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इफ यू लुक एट इट इफ यू स्टडी इट मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग इन द केस ऑफ मिडिल क्लास एंड कॉमन पीपल और पुअर पीपल दिस इशू ऑफ पॉट होल इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू महाराष्ट्र लिमिटेड टू पुणे बट इट इज इन नासिक एवरी डिस्ट्रिक्ट दिस इशू इज देयर पीपल आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इशू And in some days, we are definitely going and meeting the family also.
5: Exactly, who is responsible for this? Because Mahayuti government is in power. In fact, the Deputy Chief Minister Sunitra Pawar is the Guardian Minister for Pune.
4: See, for this, totally government is responsible. Government is saying that, you know, we are doing good infrastructure work. But one side, you are saying that you are doing good infrastructure work. But on the other side, the kind of work or the quality of work is pathetic. What they are doing is, like for example, in Chakan also, when we were visiting there, in the night they did the pothole repairing. Next day, when the rain came, everything was washed out. So the quality of work which is happening in Maharashtra is very poor.
0: Well, the pothole tragedy has left a family shattered. Managing Editor Shiv Varur has in fact spoken to Rishabh Patole's father about the accident, the desperate moments that followed, and who should answer for his child's death.
6: ऋषभ के जाने का हमें बेहद दुख है इस वक्त आपसे बात करना भी बहुत मुश्किल होगा लेकिन अगर संदीप जी आप बता सकते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था
7: यस तो मैं संदीप पाटोले एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अभी इंजोड़ी में विप्रो कंपनी में एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ और पिछले 15 सालों से मैं इधर रहता हूँ तो मैं एज ए रेगुलर रूटीन कल भी उसी तरह अपनी बेटी और बेटे को लेके ट्यूशंस के लिए 6 बजे के आसपास जो कि बद्रेशील साइड में है बद्रेशील साइड एक प्रोजेक्ट है बद्रेश का उधर जा रहा था तो जैसे ये घर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास तो मैं कल भी उसी तरह जा रहा था 6 बजे अपने बच्चों को ट्यूशंस में छोड़ने के लिए उस टाइम एक मैं लगभग 10-15 मिनट 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मैं एक साइड से जा रहा था तो बीच में ही एक खराब रोड और गड्ढे की वजह से एक टेम्पो जो आइशर टेम्पो है वो मेरे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गया और उसने थोड़ा सा टिल्ट किया और मेरी तरफ उसने टर्न मारा, तो गड्ढे की वजह से उसका टेम्पो वाइबल हुआ और वो सीधा मेरे बेटे को दिमाग मेरे बेटे के दिमाग पे इधर थोड़ा सा एकदम सा धक्का लग गया और मेरे बाइक स्किड हो गई वहां पे और हम तीनों भी मतलब मैं मेरी बेटी और बेटा तीनों भी बाइक स्किड होके गिर गए और उसी में उसको बहुत नाक और कान से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मैंने खुद को सवार लिया, मुझे भी थोड़ा लगा है, लेकिन मैंने देखा कि उसको बहुत सारा खून आ रहा है तो मैंने उसको बाजू में लेके आया, उठाया और फिर हेल्प के लिए पुकार रहा था तो एक दो लोगों ने आके उसको गाड़ी निकाली और मेरे को आगे लेके गए साइड में और उसके बाद उन्होंने मैं चिल्लाता रहा कि इट्स मींस ब्लडिंग बहुत हो रहा है तो उसको कुछ मेडिकल हेल्प की जरूरत है, कोई तो हेल्प करो। तो मैं लगभग 3-4 मिनट यही करता रहा था, लेकिन अफसोस की कोई भी आगे नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट में एक जो कि क्या वाला रहता है ओला या उबर वाला तो पता नहीं कौन सा था, बट उसने इंसानियत के नाते वहां पे क्या ला के खड़े कर दिए, बोलो कि इसमें डालो और लेके चलते। तब तक पेट्रोलिंग करने वाले जो दो पुलिस के कर्मचारी थे वो उधर आ गए और हमने तीनों ने मिला के उसको हम तीनों भी उसमें बैठ गए कैब में और उन्होंने हमें आगे वो पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले आगे चलते उनको रास्ता तैयार करके मणिपाल हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन उसमें लगभग 20 से 25 मिनट लगभग 15-20 मिनट के आसपास उतना टाइम तो चला गया और उसका बहुत स्वेलिंग हो रहा था, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था तो उसका वो उसका बेहोश हो गया था। तो बाद में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया और डॉक्टर ने उन्होंने अपना CPR वगैरह एडमिट चालू कर दी। लेकिन उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि भाई हम उसका बहुत सारा ये हो गया, हार्ट का रेट लगभग पहले से ही वो उसका हार्ट बंद पड़ गया है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे 15-20 मिनट के बाद और कोशिश करके उन्होंने लास्ट में मेरे बेटे को डेड डिक्लेयर घोषित कर दिया। तो ये अनहोनी मेरे साथ जो हुई है सिर्फ और सिर्फ ये अपने जो रोड है और जो गड्ढे है, मतलब पुणे में ही नहीं बल्कि सब जगह यही हाल है। और ऐसा है कि गड्ढे भरते हैं तो 5 दिन में उसका उसमें कुछ मिट्टी मिला देते हैं लगभग। तो
0: Without stepping into a short break, see you on the other side with more news and updates.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, R Pure Vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान
2: से, देश का टायर जेके टायर।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
4: अरे मेरे राजा।

0: वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, R Pure Vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: क्या रहा आग लगने का, क्या कुछ पता चला अभी? आपने मीटिंग भी करी है?
1: एकदम ठोस कानून सामने नहीं आया, फॉरेंसिक होने के बाद ही हो सकता है।
2: एक सवाल उठ रहा है,
3: रेस्पॉन्सिबल जो लोग चलाते हैं, जिसके पास सब कुछ नहीं है जो रहना चाहिए वो सब नहीं है, ये केएमसी को, फायर को, सीएससी को, सबको मिला के देख के एक टीम करके सब सर्च करके हमारा एकेबारे जीरो टॉलरेंस।
4: The Rashtriya Janata Dal is holding a Lok Bhavan march in Patna to protest against the Bihar government over a range of student and youth related concerns, including paper leaks, unemployment, recruitment irregularities and the alleged firing of an AK-47 by a police constable during a demonstration. Leading the march is Tejaswi Yadav, and that march is from its party office.
5: वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किस एंगल से छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई, एक आध राउंड नहीं कई राउंडें चलाई गई, और कई छात्र जो घायल थे जिनको प्रशासन ने खुद ही एडमिट किया हुआ था अस्पताल में, वो हम लोग भी मिलने के देखें, तो कोई झूठा बात तो है नहीं। खैर जो भी बात है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
6: देखिए सरकार खुद भी गिर चुकी है, और इस सरकार को लेकर के जितनी चिंताएं हो सकती हैं वो सब है, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के जहन में या तेजस्वी जी के जहन में नहीं है, बिहार के आम आवाम के बीच में है, खास करके छात्रों युवाओं के बीच में है। AK-47 इतना रेयर इंस्ट्रूमेंट है, इतना रेयर हथियार है कि पुलिस SOP के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आप के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये छात्र और युवा एक बेहतर परीक्षा
7: Political parties have jumped into this student agitation which was going on in Bihar for last 10 to 12 days. We saw Pappu Yadav actually joining the students on the dharna, and yesterday Tejaswi Yadav went there to render his support. Today there is a Lok Bhavan march. Lok Bhavan march organized by RJD from Patna's Gandhi Maidan to Raj Bhavan, that is the Lok Bhavan. And RJD is not only taking up the issue of agitating students, but also the police firing which happened in Sivan, where AK-47 was used, and various other issues which to corner the government. So today the RJD actually has gotten into the role of an opposition party, and Tejaswi Yadav was being alleged that he is nowhere to be seen when the students in large numbers are agitating against the government for their own cause. Tejaswi Yadav was completely absent from the scene. Ye kya leke aap ghum rahe hain?
8: भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है आए दिन जो देख रहे हैं, सम्राट चौधरी जी का जब से सब बिहार में सरकार बना है, जब उनको से बिहार के युवा छात्र जब अपने रोजगार की बात करते हैं तो उन्होंने युवाओं पर लाठी चार्ज करवाने का काम किए हैं, जब उनसे मन नहीं भरा तो गोलियां चलवाने का काम किए हैं।
9: हम लोग मार्च के लिए आए हैं, जो निरंकुश सरकार है इस पर अंकुश लगे इसके लिए हम लोग आए हैं, छात्र की न्याय के लिए आए हैं, जो छात्रों पर लगातार लाठी चार्ज हो रहा है उस पर आए हैं, छात्रों पर गोली चल रहा है कहाँ का न्याय है? अगर छात्र जगेंगे तब ना कुछ होगा।
10: पटना में आज RJD का राजभवन मार्च है, और AK-47 जिस तरीके से सिवान में चली थी उसके विरोध में देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है वो AK-47 लेकर अपने हाथों में आए हैं, और यहाँ पर इन्होंने पुलिस का बैच भी लगा कर रखा। ये बताइए ये विरोध प्रदर्शन करने का क्या तरीका है?
11: जो स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पर लाठी चार्ज और AK-47 चलाया जाता है प्रशासन के थ्रू। तो हम प्रशासन को, बिहार सरकार को इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, ना कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है।
10: ये यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, जिस तरीके से सिवान में AK-47 पुलिस के द्वारा चलाया गया था स्टूडेंट्स पे, जो स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, दो तीन छात्रों को जो है गोली भी लगी थी, वही सीन रिक्रिएट किया जा रहा है सिंबॉलिक तरीके से इनके द्वारा, कि कैसे बिहार पुलिस ने छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया। ये
4: Raman Rai is at the protest site. He joins me live. Raman, just take us through what's happening around you, the demands being made by the party supporters.
12: Yeah, well, we are in the protest side and we are in the march as well, and I have been joined by the RJD spokesperson Shakti Yadav with me. Shakti ji, aaj aap log ka Raj Bhavan march ho raha hai, kya kehna chahenge is mauke par?
13: Ye Raj Bhavan march
3: सत्ता के अहंकार के खिलाफ है। ये राजभवन मार्च युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ है। ये राजभवन मार्च में युवाओं के भविष्य संहारने के संकेत हैं। जब जब इस देश में सत्ता प्रतिष्ठान जब बहसीपन का शिकार होता है और हमारे युवाओं को, छात्रों को नक्सल मानसिकता कहा जाता है, क्वेश्चन पत्र लीक करो तुम, 152 बार करते हो लीक, संज्ञान नहीं लेते हो, जब नॉक करता है देश का युवा और छात्र, उसको आप नक्सल मानसिकता के कहते हो, गोलियां चलवाते हो, AK-47 चलाई जाती है, AK-47 जो गोलियां चलाई गई वो किस पे चलाई गई, हमारे देश के भविष्य पर, हमारे युवा साथी पर, छात्रों पर, कौन दिया आदेश? तेजस्वी जी ने खबरदार किया, पहले मुख्यमंत्री को पत्राचार किया, फिर DGP से मिला, डेलीगेशन मिला, सत्ता चुपचाप रही, कुमकर्दरी निद्रा में रही। जब सरकार ने कोई कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं किया तो राजभवन मार्च हमारा अंतिम विकल्प नहीं है।
2: आगे पुलिस बल डिप्लॉयड है भारी संख्या में,
3: पुलिस स्टेट हम बिहार को बनने नहीं देंगे। बिहार को अगर कोई पुलिस स्टेट बनाना चाहता है, लिच्छवी गणराज जो लोकतंत्र की जननी है उस पर कोई हमला करना चाहता है, बिहार स्वीकार नहीं करेगा।
2: तो सी, दिस इज शक्ति यादव, द स्पोक्सपर्सन ऑफ RJD, ही इज ज्वाइनिंग इन द मार्च एज वेल। तेजस्वी यादव इज गोइंग अहेड एंड वी हैव प्रभाकर विद ऑल्सो अस। प्रभाकर, प्लीज टेल अस द वे द मार्च इज गोइंग अहेड टुवर्ड्स द राजभवन, हाउ इट सीम्स लाइक।
7: सी, दिस वॉज सपोज टू बी अ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। We saw students sitting on a dharna for last 18 days. Now it has turned political. Day before yesterday, we saw Pappu Yadav actually participating in it. Yesterday, Tejaswi Yadav went there, met the students. And today, this is a march. And on the issues of students only, when they are talking about the AK-47 firing in Sivan, that's also pertaining to the students' protest which was happening that particular day. They are also talking about the TRE examination. So now the student protest which was happening in Patna, unlike Ranchi, is turning political. Ranchi protest we saw, it was completely a student protest. But this protest is unfortunately, I would say, turning political, and now the political parties have jumped into the fray.
2: So see, this is our editor of Bihar, Prabhakar, is telling us that this is the totally different protest by the Ranchi. It's a political party, RJD, is now launching a Rajbhavan march. As you can see, the numbers of Karyakartas, the RJD supporters and the voters of the RJD as well as on the roads of Patna heading to the Rajbhavan march. But there is also a huge number of police force which have been deployed at the Dak Bangla Chauraha, and we are very close to Dak Bangla Chauraha. Soon we'll reach the Dak Bangla, which is the center place of the every protest which took place in Patna. And from ahead of the Dak Bangla Chauraha, I think so that police will not allow the RJD protesters or the supporters to go ahead to the Rajbhavan march.
4: All right, we'll come back to you, Raman, once this protest is interrupted, if it is. Well, thank you for joining us from the ground there. Moving on now, a war of words has broken out in Rajasthan over former Chief Minister Ashok Gehlot's push for more Gen Z candidates in the upcoming local body polls. Gehlot has called for more than 50% of Congress tickets to go to young Gen Z candidates, saying a new generation is emerging across the nation. The BJP has hit back with party leader Gaurav Vallabh, saying Gehlot's formula would mean he himself, his son and Sachin Pilot would not contest the next election. Vallabh pointed out that Gehlot is over 75 years old, while his son and Pilot belong to Gen X, turning Gehlot's call for young candidates into a fresh political jab.
13: 50% se zyada ticket Gen Z ko yuvaon ko dein, kyunki Gen Z aane ke baad mein ek pura desh ke andar zamana badal raha hai, nayi peedhi aage aa rahi hai. तो सीनियर का अनुभव काम लो, उनको भी साथ रखो, पर जो जैन जी कहला दीजिए, युवा पीढ़ी कह दीजिए, इसका जो महत्व है उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। जंतर मंतर पे जो एक आंदोलन किया इन्होंने, और राहुल गांधी जी ने जो धरने दिए PM हाउस के बाहर, फिर कांग्रेस कमेटी ने सब जगह धरने दिए, प्रदर्शन किए, मैंने भी भाग लिया 2 बार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर। उसके बाद में एक माहौल बन चुका है कि बदलाव पीढ़ी का हो रहा है।
14: तो इसका मतलब अशोक गहलोत जी राजस्थान के लोगों को कह रहे हैं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो तो 75 साल के ऊपर उम्र के हैं। उनका बेटा भी चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि वो जेन एक्स हैं। सचिन पायलट भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो भी जेन एक्स है। टोटासरा जी और जूली जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो बेबी बूमर्स हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि वह भी जेन जी या मिलेनियल्स नहीं है। अशोक गहलोत जी, पहले आप सार्वजनिक मंच पर यह घोषणा कीजिए कि आप और आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि आप दोनों ही जेन जी नहीं है। पहले तो यह घोषणा कीजिए।
15: एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, इफ यू सी इट इज ऑन रिकॉर्ड वेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और अदरवाइज ड्यूरिंग द इलेक्शंस, बीजेपी हैज ऑलवेज गिवन प्रोमिनेंस टू द यूथ बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has time and again said that India is going to be the Yuva Bharat among the world. So that is why the youth are on the priority of BJP. On the other hand, these people, those who are saying that Janjis are given ticket and all that, they should have asked their party and their affiliate parties what they are doing. Are they really concerned about it? The answer will be a big no.
4: In news just coming in, a heated exchange erupted between Congress MP Imran Masood and SP MLA Ashu Malik during a District Development Coordination and Monitoring Committee meeting, a Disha meeting in Saharanpur. The meeting chaired by MP Imran Masood at the Vikas Bhavan Auditorium saw tempers flare as the two leaders clashed during discussions. Voices were raised amid a disagreement over speaking turns, with both sides expressing displeasure. The verbal confrontation briefly disrupted the proceedings, turning what was meant to be a development review meeting into a political face-off. Further details on the trigger for the confrontation are, of course, awaited, but let's just bring you what happened inside that meeting. Our reporter Ajay Dubey now joins you live. Ajay, quite an embarrassment for both political parties here, given what we're seeing on camera.
16: See, this conflict is the reason between two leaders from the parties. One is from Congress, one is from Samajwadi Party. They are continuously having bad words against each other. And this time it was a meeting related to Disha. Disha, in this meeting, while the leaders, the local workers and leaders were telling their problems, at that time, Mr. Imran Masood got angry on the MLA of Samajwadi Party. So as we can see in the visuals also, they are targeting each other, and this is not happening first time. Initially also they were targeting each other, they were making comment about their parties, their leaders. Imran Masood, who joined Samajwadi Party in 2022, and later on when he did not got a ticket, he left Samajwadi Party and joined Congress, and after that in 2024 he became an MP and continues.
4: All right, there seems to be an audio problem there with Ajay's line. We will, of course, come back to that story. But we're going to be slipping to a short break. News and updates will continue on the other side. We'll be back with the international news. We'll tell you more about the UAE cutting off trade with Tehran. For now, what implications that will have? More on that in moments from now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: protest targets alleged paper leaks, unemployment, recruitment irregularities, and what the RGD calls excessive police action against students. The opposition party is also demanding answers over the alleged use of an AK-47 by a police constable during a demonstration in a district in Bihar. With Tejasvi leading the march from the RJD headquarters, the party is accusing the government of failing Bihar's youth and is demanding a probe into the alleged firing incident. The march, of course, is expected to intensify the political battle between the opposition party and the ruling state government. On the streets of Patna, the RJD, as we could see, the march has been halted at a particular point by the police and security deployed in the area. Water cannons also being used, as you can see on the screen there in Patna, to disperse the crowd. You heard from Tejasvi Yadav there, their march has been halted, and many of the supporters of the party have also perhaps been detained. We'll get more clarification on that in a moment from now from our reporters. But those are the scenes on the streets of Patna. This comes at a time when the RJD had launched a massive Lok Bhavan march against the state government, raising a host of issues affecting students and young job seekers. The protest targets alleged paper leaks. It also targets unemployment, recruitment irregularities, and what the RJD has called excessive police action against students. They're also demanding answers from the state government on the alleged use of an AK-47 by a police constable during a demonstration in a district in Bihar. Raman Rai now joins me live. Raman, just take us through the latest. The last we spoke, you did say that it seems in moments from then there would be a halting of that march by the RJD, by the security personnel. What are the latest details you can share with us from the ground? We're seeing the use of water cannons. We also heard from the RJD leader just moments ago. Have they been detained, the supporters?
1: नहीं जाने देंगे देश में। ये आरजेडी के कार्यकर्ता है जिनका कहना है कि इस बस को अब हम आगे नहीं जाने देंगे। हालांकि इसी बस में तेजस्वी यादव को डिटेन करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो पटना की एसडीएम है उनके तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान ना करें, क्योंकि आपको लगभग हर कार्यकर्ता के हाथ में यहाँ तिरंगा दिखाई दे रहा होगा। और छात्रों के मांग को लेकर ये राजभवन मार्च आरजेडी ने आज बुलाया था। जिस तरीके से AK-47 चलाया गया सिवान में, उसके विरोध में आज पूरे बिहार भर से राजद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और ये एक बड़ा मार्च हो गया है पटना में आज, क्योंकि सुबह उतनी भीड़ नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं अचानक से भीड़ बढ़ती है। पहली कोशिश पुलिस के द्वारा इन्हें डाकबंगला चौराहे पर रोकने की कोशिश होती है, लेकिन वहाँ पुलिस इन्हें रोक नहीं पाई। उसके बाद इनकम टैक्स जो गोलंबर है वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस ने तैयारी करके रखा था, बैरिकेडिंग लगा के वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है। फिलहाल उन्हें इस बस में डिटेन करके रखा गया, और इसी बस के ऊपर आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है आरजेडी के वो

0: आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहां पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि अहंकार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। इतना अहंकार मत करो, आखिरकार आपको भी देश के लोगों ने वोट दे के चुना है। अगर इतना अहंकार हो जाएगा तो देश की वही जनता आपको जवाब देकर बाहर निकालेगी। और ये जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब पंजाब की जनता आपको ज़रूर देगी।
1: कुकर्म जो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने और उनके मंत्रियों ने मिल के किया है, आज वो धीरे धीरे और सामने आने शुरू हुए हैं। 19 CAG की रिपोर्ट, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है। अभी ACB ने भी अपनी जांच के अंदर अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी और ठेकेदारों के बीच में जो मनी ट्रेल हुई है उसके कारण से इनको गिरफ्तार किया है। और जो बार बार केजरीवाल दिल्ली की जनता से यमुना साफ ना होने पर माफ़ी मांग रहे थे, ये भी सामने आ रहा है कि इनको माफ़ी मांगना अच्छा लग रहा था क्योंकि करोड़ों रुपए डकार रहे थे।
2: आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी STP प्लांट दिल्ली में नहीं लगा। और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर जहां पर STP प्लांट लगाकर दिल्ली में स्वेज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे, जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो, ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया।
3: Education Minister Prahlad Joshi has cracked down on the NTA orders. He's ordered rather a major overhaul. The revamp focuses on tightening confidential operations, strengthening internal checks, and improving the overall security infrastructure. Under the new measures, 600 exam experts have been removed, while new experts are being brought in. A four-tier system will now scrutinize question papers. NTA will also induct 20 to 25 new officials and shift its office to the new premises and bring in CISF security personnel. NTA set shield exam papers with new rules. Air gap systems, secluded rooms and device deposit rules are being planned, along with stricter paper security protocols and greater cyber security oversight. We have some breaking news coming in, and this news is coming in from Navi Mumbai. A shocking case of road rage has emerged from Navi Mumbai when Ola driver was allegedly dragged on the bonnet of a moving car after a violent altercation. Dramatic visuals show the victim clinging desperately to the windshield wipers as the vehicle speeds ahead. The driver was also reportedly attacked with an iron rod during the confrontation. The accused later fled the spot, abandoning the victim. Police have launched an investigation and are examining the CCTV footage and viral videos to identify the sequence of events and take action against those responsible. Sujata joining me live. Sujata, tell us more about this altercation. What happened?
4: Well, yes, Vedika, a horrific and alarming incident has come to light from Nerul in Navi Mumbai, where an Ola driver was dragged on the car bonnet for 2 kilometers straight, and the entire altercation started with the overtaking of between these two cars, where the accused in the case, he confronted the victim here, her name Mr. Pandey, and he went on to hit him with an iron rod first. And when he asked him why did he go on with this, he then tried hitting him with his car. That is when the victim here, he came onto the bonnet of the car, and eventually he was dragged till 2 kilometers. Now, that's not it. After the incident happened, the victim here accuses the police of not taking action against the accused as soon as the incident happened, but in fact tried to mediate the situation between both.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: वक्त रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ambitions crossing borders, voices refusing to wait their turn, India is chasing gears, faster, bolder, more restless, it doesn't stop, neither do we, NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary. Conversations that connect countries and cultures. Where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha. Ideas across borders. The Nepal Dialogue. 27th August. Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: point, Sajjan Kumar. I'm completely out of time. I want to slip in a quick question. Tehseen, this is what the damage that people like Imran Masood can do to the alliance. Congress wants more seats from SP. Why should Samajwadi Party give any more seats?
1: That will be decided not with at Imran Masood's level or the MLA's level. That will be decided between Mr. Gandhi, Mrs. Vadra, and Akhilesh Ji and Dimple Ji. Nobody else, anyone who has this misunderstanding, they'll decide. But look, you know, in politics, you tend to be the alpha and you fight for your territory. You will maintain your territory even if you're in an alliance. That's just the nature of politics. It, at least like BJP MPs and MLAs, you remember that picture, Aziz Khan Saab will remember, yeah, where an MLA was hitting the MP with a chappal or the MP was hitting him with a chappal. So at least this is basic. So, I mean, these minor Ajit things Khan,
0: is that
1: happen.
0: How you see it? Very quickly? Aise dekhte aap ise? Chappalon se nahi maar rahe, bas tu meh meh ho rahi hai.
2: Dekhe, aisa hai Gauri ji. Abhi jo Tehseen ne kaha, ye fact hai. अभी कई जगहों पे मैं कई सारे एग्जाम्पल दे दूंगा कि जहां चप्पलों से मारा और पता नहीं कैसे कैसे किन किन तरीके से व्यवहार किया, पता नहीं क्या क्या होता रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मीडिया में शायद वो चला हो, लेकिन जिस तरह इस पे डिबेट हो रहा है
0: वो भी वीडियो भेज दीजिए, वो भी चला लेंगे। चुनाव तो अभी नहीं हुआ है अभी।
2: अरे सुन लीजिए, सुने ना, यहाँ पे तो एक हेल्दी बातचीत हो रही है, आपस में डिस्कशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छे लोकतंत्र में ऐसे डिस्कशन होने चाहिए।
0: Okay.
2: और मुझे लग रहा है वो दोनों लोग चूंकि सहारनपुर से ताल्लुक रख रहे हैं आसपास से, उनका ही ना कहीं उनका एक जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो
0: right.
2: और आपस में जो सिस्टम है वो मुझे लग रहा है कि ऐसे हालात पैदा होते रहते हैं, लेकिन
0: okay,
2: मैं दूसरी बात कहना चाह रहा
1: हूँ।
0: Yes.
1: All three of us on this panel will say, please don't eat pakodas. It's not healthy. Eat some protein. India needs more protein.
0: All Let I will say when in. I wrap this is, picture abhi baki hai, read between the lines. This is only, the election is only warming up and we are going to talk much more about it. Completely out of time right now, slipping into a short break.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा प्योर मसाला।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आरती और मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister Shishir Khanal, Finance Minister Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal.
4: I'm in Ahmedabad's Gift City today from the lens of the regulator.

0: leading the charge on that front, pushing for the Congress to get at least 150 seats in seat sharing. Congress says Uttar Pradesh in charge, Rajendra Pal Gautam, has also demanded an equal partnership in seat sharing. The SP, though, may not be inclined to part with more than 70 to 80 seats. Now, the Congress's logic in all of this is very simple. Even during the 2017 assembly elections, when the Samajwadi Party was in power, the Congress had bagged 105 seats under the alliance out of the 114 that they contested. Then came the 2024 Lok Sabha elections, where the BJP suffered reverses, perhaps its biggest setback in Uttar Pradesh. In 2024, the Congress won 6 of the 17 seats it contested, yielding a strike rate of 35%. So they argue this time their claim to 150 seats is even stronger. Now, the results of elections in West Bengal and Assam have also given fresh wind to the Congress's hopes, given how they now seem to be emerging as the party of choice for Muslims. Remember, from drawing a blank in the last West Bengal elections, this time the Congress actually won 2 seats. They managed to open their account, and both of these seats were in Muslim majority areas. And this Muslim vote is a sizable one in UP as well. But when you look at actual numbers in the assembly elections, the wind goes out of the Congress's sails. The Samajwadi Party actually bettered their performance between the 2017 and 2022 assembly elections, going from 47 to 11 seats, 111 seats, and a vote share of 32%. The Congress came down from 7 MLAs to only 1 MLA in the last assembly election, and a vote share of a mere 2% and a strike rate of merely 1%. Even in the Lok Sabha election performance of both parties in UP, the SP outpaced the Congress, getting 37 Lok Sabha MPs as compared to just 6 of the Congress. So, what happens then? For now, it seems that this wrangling is more pressure tactic than anything else. But when it comes to the Samajwadi Party, there's always a willing suitor for them, remember, in the form of Asaduddin Owaisi, waiting in the wings. Let's see who blinks first in this and who will be left taloing pakoras. Joining us now on the show, we have Sanju Verma, national spokesperson of the BJP. Dr. Anand Ranganathan continues with us. Tariq Khan of the Samajwadi Party and Kamlakar Tripathi of the Congress. First, let's start with you, Mr. Tariq Khan. Ab ye pakode pe kyun jhagda kar rahe hain aap? What's going on?
1: We should look at BJP as well. They have even stopping convoys of their ministers. आपको पता है जो इनके महोबा में रिज्जू भैया है उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह का बकायदा जो काफिला था उसको रोक दिया था और कितने जूते चप्पल पड़े हैं अगर हम तारीख के साथ बताएंगे ना मैम अभी देर वुड बी नो आंसर कितने जूते और लात घूसे अभी अयोध्या में एक जगह प्रोग्राम हो रहा था शांति भोज में गए हुए थे बीजेपी के नेता वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे खैर छोड़िए ऑल दिस थिंग्स हैपेंड इन 2024 एज वेल कि अलायंस नहीं हो पाएगा बड़ी दिक्कत है अब मैं एक राय आपकी भी चाहता हूं मैम कि अलायंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपको क्या लगता है
0: ना करें लगता है जो खुशी खुशी साथ में आए अब किसी का घर बन रहा है तो मैं क्यों कहूंगी कि ना हो भाई एक साइकिल पर एक से दो भले
1: थैंक यू थैंक यू आई जस्ट वॉन्ट योर एडवाइस रंगनाथन साहब भी एडवाइस देंगे इसलिए मैं कह रहा हूं मैम अगर मैं कह रहा हूं इन सब लोगों को आप दिमागी वो नक्सलवादी तो मानेंगे लेट फाइट लड़ने दीजिए इन लोगों को क्या दिक्कत है इवन आप लोगों का तो क्लेम ये है कि हमको जनता पसंद ही नहीं करती तो लेट अस फाइट हम लोगों को लड़ने दीजिए लीव अस
0: हम लोगों को जनता पसंद भी नहीं करती हम लोग इमरान मसूद एंड द समाजवादी पार्टी बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज सेइंग दिस
1: यू आर एग्री बोथ गौतम
0: अच्छा नाउ सडनली यू हैव गॉट यू नो मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस गोइंग एंड मीटिंग बहन जी सडनली दे आर सेइंग वी विल नॉट सेटल फॉर लेस देन 150 सीट्स
1: मैम इन दोनों लोगों को आप दिमागी नक्सल कंसीडर करती हैं या नहीं कंसीडर करती हैं ये मैं पूछ रहा हूं इमरान मसूद और हमारे एमएलए दोनों दिमागी नक्सल हैं या नहीं हाँ या ना
0: नक्सल नक्सल भाई भाई ऐसा कह रहे हैं आप
1: नहीं मैम बीजेपी तो यही कहती है ना ये सब लोग जो सवाल उठाते हैं जो जनता की आवाज कर उठा रहे हैं सब दिमागी नक्सल
0: अच्छा देखिए अभी तो आप दिमागी नक्सल में इसको आप ट्रैजेक्टरी चेंज मत कीजिए बिकॉज अनकंफर्टेबल टाइम यू वांट टू चेंज इट यू नो एंड यू आर बेटिंग संजू वर्मा सो शी क्विकली जंप्स इन एंड टेक्स द बेट एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट दिमागी नक्सल बट बिफोर आई कम टू यू संजू वर्मा सिंस ही हैज वेरी जेंटली आस्क्ड फॉर एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर आनंद रंगनाथन बताइए डॉक्टर आनंद रंगनाथन
2: नहीं नहीं देखिए तारिक भाई मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर एडवाइस ही चाहिए तो मुझसे तो एक तो गलत आदमी से एडवाइस ले रहे हैं। पर मैं ये कहूंगा कि देखिए, दो लोग जो हैं वो पेट्रोल दे रहे हैं स्कूटीज में, दे रहे हैं यूपी वालों की, और जब यूपी वाले की पेट्रोल के पास, पेट्रोल स्टेशन पे, पंप स्टेशन पे स्कूटी आती है, तो एक राहुल गांधी है जो पीछे ऐसे कहते हैं जीरो चेक कर लो। आपकी चिंता यह है कि जो होज जिसके हाथ में पकड़ा है वो अखिलेश यादव तो नहीं है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, इससे इसके बाद मैं 1 मिनट और लूंगा पद्मजा जी से, लेकिन आप बस ये बताइए, मुझे पता है आपको खौफ किस बात का है तारिक भाई, अपने अंदर अगर आप झांक के देखेंगे, आप, मेरे को पता है आप एडवाइस मांग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। वॉट यू आर वरीड अबाउट इज विल द कांग्रेस डू टू यू वॉट इट डिड टू डीएमके। और मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि जो तमिलनाडु में कांग्रेस ने किया कि प्री पोल डीएमके के साथ थे, 4-5 सीटें जीती बिकॉज डीएमके ने उनको अलाउ कर दिया वो सीट जीतने के लिए, उसके बाद उनको छोड़ के वो पोस्ट पोल अलायंस बना के गवर्नमेंट में है, क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने किया तमिलनाडु में ठीक किया, हाँ या ना बता दीजिए बस।
0: तारिक खान,
1: रंगनाथन भाई पता है 77 में पहली बार गठबंधन वाली राजनीति शुरू हुई है ना, उसके बाद ना इतना गोला बना है, इतने लोग इधर गए उधर गए उधर गए फिर उधर गए, अगर ऐसे ऐसे करेंगे
0: गोला
1: ना
0: तो
1: तो
0: ठीक
1: हाथ
0: है,
1: में दर्द हो
0: कांग्रेस तो
1: जाएगा,
0: नहीं
1: ऐसे
0: गोल हो
1: ऐसे
0: जाएगी
1: ऐसे।
0: और
1: और
0: आपने
1: इसमें
0: गोल
1: सब
0: करके
1: है,
0: छोड़ देगी,
1: इसमें
0: उनका
1: सब
0: अलायंस करना
1: है, इससे
0: सेल्फ गोल
1: क्या
0: तो नहीं
1: आप
0: हो
1: लोग कहते
0: जाएगा,
1: हैं? सीधा सवाल
0: किससे
1: था
0: अलायंस
1: तारिक
0: करना।
1: भाई,
0: नहीं नहीं
1: तमिलनाडु में कांग्रेस
0: मैं
1: ने
0: यही तो
1: ठीक
0: कह
1: किया
0: रहा
1: कि
0: हूं,
1: गलत किया, सीधा सवाल था।
0: नहीं
1: अब आप
0: अब
1: जवाब नहीं देना चाहते, मैं समझ रहा हूं, हाँ या ना का जवाब
0: नहीं, मैं
1: था।
0: बिल्कुल कह रहा हूं, नहीं हाँ या ना नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि लोग बहुत इधर उधर हुए, इस पे कहां तक डिस्कस करेंगे हम, कितना हुए हैं? जनसंघ, ये तो हमारे साथ ही थे 77 में, जनता पार्टी के में विलय किसने किया, सब थे उसमें, हम भी थे, ये भी थे, बीजेपी वाले भी थे, तब कांग्रेस उधर थी, अब घूम के ऐसे आ गए। 67 में भी यूपी में गठबंधन बना, उसके बाद कितने लोग अटल बिहारी वाजपेयी, पता नहीं कितने लोगों को सरकार ले लेके ओके
1: बनाए,
0: गो ऑन,
1: हम
0: फिनिश
1: लोग
0: योर
1: तो तब
0: पॉइंट
1: छोटे
0: डॉक्टर
1: थे भाई।
0: रंगनाथन।
2: नहीं देखिए, हम इसके अगर क्रक्स तक जाएंगे, अगर इसकी बोटी बोटी अलग करेंगे, तो जो इमरान भाई ने जो कहा है वो खौफनाक इसलिए है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनको ये दिख रहा है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। एक आप आई ऑनेस्टली पद्मजा, वन मोर विंडो शुड हैव बीन देयर ऑफ डीएमके पैनलिस्ट, ही वुड हैव सेट द एंटायर थिंग क्लियर एज डे, बिकॉज इट इज क्लियर टू मी ऑलरेडी, कांग्रेस इज गोइंग टू डिच समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की 6-7 सीटें ऐसी होंगी जहां पे वो जीत सकती हैं, लेकिन वो कांग्रेस को देंगी कि चलो भाई तुम जीत जाओ। अब कांग्रेस जब जीत
1: आपको चिंता
2: जाएगी
1: है,
2: वो समाजवादी पार्टी
1: आप
2: को पिच
1: चाहते हैं
2: करने की
1: समाजवादी
2: कोशिश
1: पार्टी
2: करेगी।
1: जीते, आप चाहते हैं समाजवादी पार्टी जीते, आप चाहते हैं समाजवादी पार्टी जीते, आप ये
2: मैं
1: चाहते
2: क्यों
1: हैं, हाँ या
2: चाहूंगा
1: ना,
2: कोई
1: हाँ या
2: जीते
1: ना,
0: कोई
1: और
0: हारे,
1: क्या,
0: मैं
1: अभी मुझसे तो हाँ या ना, अभी तो मुझसे हाँ या ना मांग रहे थे, क्या है भाई रंगनाथन साहब, दोस्त भी कहते हो और
0: ओके लेट
1: सपोर्टर
0: मी
1: भी
0: ब्रिंग इन
1: करते हो,
0: संजू
1: अभी
0: वर्मा
1: मुझसे हाँ
0: हियर।
1: ना मांग रहे थे,
0: लुक
1: हाँ
0: लुक,
1: या ना,
0: तारिक
1: हाँ
0: खान विल फिगर आउट व्हाट एवर हिज प्रॉब्लम इज विद कमलाकर त्रिपाठी, बट बीजेपी शुड नॉट बी हैप्पी इन दिस, यू गॉट इनफ प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन। एवरी डे अखिलेश यादव कीप सेइंग कि यहाँ पे दो चक्के हैं, एक दिल्ली का है एक लखनऊ का है, दोनों आपस में टकराते रहते हैं, लखनऊ में भी दो चक्के आपस में टकराते रहते हैं, इफ यू एवर टॉक टू ब्रिजभूषण शरण सिंह ही विल नॉट हैव वन काइंड वर्ड टू से अबाउट योगी आदित्यनाथ। संजू वर्मा
3: पद्मजा जी, पहले तो यू से संजू वर्मा इज क्विक टू टेक द बेट। अरे भाई डिबेट करने आए हैं, मुंह पर ताला लगाकर बैठने के लिए थोड़ी आए हैं। इफ समबडी इज थ्रोइंग द गॉन्टलेट, आई एम ऑल फॉर द चैलेंज। नाउ इफ दैट इज कॉल्ड टेकिंग अप द बेट, आई ग्लैडली एक्सेप्ट दैट यू नो एलिगेशन। बट नाउ लेट मी कम स्ट्रेट टू द इश्यू वेरी क्विकली। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव, समाजवादी पार्टी एक्चुअली रेज्ड इट्स वोट शेयर बाय ऑलमोस्ट 11%। Despite that, they were limited to 111 seats. What am I trying to say? I always say that BJP's biggest strength is the ability to convert vote share into winnable seats. And while the difference in vote share between BJP and any leading opposition party in a given state may not be very large, the opposition fails to convert vote share into winnable seats. That's point number one. Point number two. Today, Imran Masood of the Congress versus Ashu Malik of the Samajwadi Party. Couple of years back, it was, Ajay Rai versus Kamal Nath. Then it was Kamal Nath versus Ram Gopal Yadav. और यहां तक कि पिछले साल अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चिरकुट बोल दिया था, कहा था कि इनमें तो चुनाव जीतने की क्षमता ही नहीं है। सो हैव द समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी बिन एट लॉगरहेड्स विथ ईच अदर? यस। The third point I want to make is this. I will only quote two examples. One is November 2024 by-elections to 9 seats in Uttar Pradesh. The Congress wanted only three from the Samajwadi Party. It refused. Then the Congress withdrew and Samajwadi Party fought all the 9 by-elections on its own strength. The BJP won 7 out of those 9 with a strike rate of 78%. The Samajwadi Party won 2 out of 9 with a strike rate of only 22%. So my third point is that the Samajwadi Party and the Congress continue to be at loggerheads, and when push comes to shove, they have not been able to converge to take on the BJP. And my final point is this. Sabse ahem chunav 2025 mein was the Milkipur by-assembly election from Uttar Pradesh, where Avdhesh Prasad, the man who supposedly defeated BJP from its bastion in Ayodhya / Faizabad, Avdhesh Prasad's son Ajit Prasad was defeated in Milkipur by BJP's Chandrabhanu Paswan. And why I say Milkipur is a mirror image of Samajwadi Party not getting its plot together is simply because Milkipur mein 16-17% Brahmin hai. Ek minute. Milkipur mein 16-17% Dalit hai. Milkipur mein 35-40% OBC hai. So Milkipur is a cosmopolitan constituency where the Samajwadi Party could not win.
0: Okay.
3: And the BJP won by a margin of 62,000 votes. What does that tell you? It tells you that 2027 mein wahi hoga jo 2022 mein hua aur 2017 mein hua. अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो चुकी है।
0: पर ये तो बता दीजिए, समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस के पकोड़े झगड़े में आपकी सिंपथी किसके साथ है?
3: मेरी सिंपथी?
0: हाँ,
3: मेरी सिंपथी किसी के साथ नहीं है। दोनों आपस में लड़ लड़कर they are going to reduce each other to oblivion.
0: ओके, कमलाकर त्रिपाठी, संजू वर्मा इज प्रिडिक्टिंग ओब्लिवियन फॉर यू। अभी तो आपका कम हुआ है, जितना आप झगड़ा और करेंगे खुद ही अपने अलायंस के जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं आप।
4: पद्मजा जी, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, डोंट ट्राई टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इट वॉज अ नथिंग काइंड ऑफ अ इंसिडेंट, दैट वॉज अ दिशा मीटिंग इन विच इब्रान मसूद वॉज प्रिसाइडिंग एंड आशु मलिक वॉज रेजिंग समथिंग एंड ही सेड दैट आफ्टर दैट लेट इट कंप्लीट द अदर पर्सन, द अदर मेंबर एंड वी विल डू इट एंड बोथ ऑफ देम हैव एक्सप्लेन्ड इट। और दूसरी चीज आपको बताऊं,
0: सर ये मोलहिल तो हमने अखिलेश वकिलेश में भी देखा था, व्हेन कमलनाथ हैड कॉल्ड अखिलेश जी हिमसेल्फ अखिलेश वकिलेश।
4: एक मिनट,
0: सो यू आर डिगिंग अप दीस मोलहिल्स, व्हाट कैन आई डू?
4: पद्मजा जी, डोंट इंटरप्ट मी,
0: यस गो ऑन,
4: जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अनदर थिंग, बीजेपी जो आज कर रही है वो ये है कि आपन पूर्वांचल की एक कहावत है, आपन ढेंढर न निहारे आन क फुल्ली ताके। आई टेल यू व्हाट अ डिस्प्यूट इज, व्हाट अ लॉगर हेड इज। जब संत कबीर नगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शरद त्रिपाठी इसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जूता निकाल करके बीजेपी के ही वहां के एमएलए राकेश सिंह बघेल को मारते हैं, दैट इज गोइंग इन लॉगर हेड। दूसरा आपको इंसिडेंट बता दूं, ये जो आपके पीलीभीत के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक के पिता राम शरण वर्मा, उन्होंने क्लियरली कहा ओपनली मीडिया में कि योगी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है, इनसे बेहतर तो मायावती जी थी। और जो अभी जो गोपाल नंदन जी जो बोल रहे थे, मैं उस पर भी आपको बता देना चाहता हूं, ये जो टैक्टिस जो लोगों को डिच करने की है वो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कौन कर सकता है?
0: ओके, वेरी गुड, रामविलास पासवान की डेथ के बाद
4: पहले उनके पहले
3: आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना भाई साहब, यू नो पद्मजा जी लेफ्ट
4: पारस को ले लिया, उसके बाद पशुपति पारस को डिच किया।
0: ओके, फाइट्स हैपन एवरीवेयर, संजू वर्मा रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली टू दैट, संजू वर्मा, फाइट्स हैपन एवरीवेयर।
3: कांग्रेस प्रवक्ता के लिए ये कहना चाहूंगी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है।
4: कांग्रेस पर्दा हटा दीजिए,
3: कांग्रेस गॉट 2 सीट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश विद अ 2.3% वोट शेयर। प्रियंका वड्रा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ना आपको महिलाओं का
4: वोट। आप 400 पा रहे थे, 240 पे आ गए।
3: उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ चुकी है कांग्रेस की,
4: आपको
3: दो सीटें मिली थी आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में,
4: तो आप भी एक समय में पूरे पार्लियामेंट में दो सीट पे थे, उससे क्या ना देना है। उसके बाद हमने छह सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी पाई,
3: दस सीटें तो जीतिए, आप तो दो सीटों पर सिमट कर रहे थे।
4: आज की डेट में आपको
3: दस सीटें तो जीती है, पहले
4: किसान आपके खिलाफ है, महिलाएं आपके खिलाफ है,
3: डबल डिजिट में
0: कमलाकर
2: जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, त्रिपाठी जी हैं, लेकिन ये चौथा पार्ट लगता है भूल गए, मेरा नाम गोपाल नंदन नहीं है, माफ कीजिएगा, रंगनाथन है। हालांकि गोपाल नंदन बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखिए ये वॉटअबाउटरी को ऐसे एक्सट्रीम तक ले गए कमलाकर जी की, जो और लोग लड़े हैं हिस्ट्री में उनकी पूरा चिट्ठा पत्ता खोल दिया। अब ये टीपू सुल्तान को भी लाएंगे, बाबर को भी लाएंगे, ये देखो उससे लड़ा था, ये उससे लड़ा था, बात आपकी लड़ाई की हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं
4: कि कांग्रेस ने जो पंडित नेहरू तक जा रहे हैं,
2: मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने
4: आपको आपके दो साल पहले का भी बताना बड़ा मुश्किल हो।
2: सुन लीजिए कमलाकर
4: जी, जब चीजें खुलती हैं तो सबकी खुलेंगी।
0: अरे त्रिपाठी जी, गोपाल जी की बात तो सुन लीजिए दो सेकंड के लिए।
2: हाँ सुन लीजिए, गोपाल नंदन बहुत ही प्यारा नाम है, इट्स सो क्यूट, ना मैं अपने आपको आनंद गोपाल नंदन कहने वाला हूं। देखिए इन्होंने महाविकास अघाड़ी कैसे बनाई, कुत्ते बिल्ली की तरह ये उन्हीं पार्टी से लड़ रहे थे, एनसीपी को वोट मत दो, शिवसेना को वोट मत दो, और इलेक्शन के बाद क्या किया, पोस्टपोल अलायंस, डीएमके के साथ तमिलनाडु में क्या किया, साथ अलायंस था, उसके बाद लड़ रहे थे बाकी और पार्टियों से, और अब कांग्रेस आप सरकार बना दिए, तो जो जो कांग्रेस के साथ है वो एक आंख खोल के सो रहा है। पद्मजा,
4: आपने पशुपति पारस और उसके साथ क्या किया था ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले पशुपति पारस को लिया, फिर उनको डिस किया, वहां इनको ले लिया,
2: वो गलत है, आप गलत है कि नहीं,
4: नीतीश कुमार को लिया,
0: पासवान को
4: उनको डिस किया, ओम प्रकाश राजभर रोज गाली देते हैं और उसके बावजूद जो है वो अलायंस वो होते हैं। मैं लॉगर हेड आपको बता रहा हूं क्या होता है आज की डेट में। पद्मजा जी, द पोजिशन ऑफ बीजेपी इज कि नीदर द पेजेंट्स जो किसान है वो इनके खिलाफ हैं, जो महिलाएं हैं भाजपा से बेटी बचाओ की स्थिति हो।
0: ओके फाइन, बट कमलाकर जी, माय ओनली हम्बल सबमिशन टू यू इज द मोर यू आर गोइंग टू पुश द समाजवादी पार्टी अगेंस्ट अ वॉल, द मोर एक्टिवेटेड यू नो इमरान मसूद गेट्स, देयर इज आल्सो असदुद्दीन ओवैसी वेटिंग इन द विंग्स, वो तो दो तीन बार डोरे डाल चुके हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आप हमारी तरफ आ जाइए।
4: दूसरे देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूं पद्मजा जी, हमारा आपस में क्या है, पहली चीज आपको बता दूं, ना इमरान मसूद चीजों को फाइनल करने वाले हैं, ना आशु मलिक फाइनल करने वाले हैं, ना रेहान जी फाइनल करेंगे, ना मैं करूंगा, वो तो पार्टी हायरार्की करती है।
0: अरे सर, उनका नाम तारिक तारिक खान है, आपने उनको रेहान क्यों बना दिया, उनको गोपाल नंदन बना दिया।
4: के दोनों युवा नेतृत्व जो है वो साथ में थे
0: इस शो पे, नामकरण सबका हो गया है, बट थैंकफुली संजू वर्मा रिमेन्स संजू वर्मा। यस, फाइनल वर्ड टू यू, यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी रेहान और गोपाल नंदन हु डिसाइड्स द अलायंस, इट्स गोइंग टू बी राहुल गांधी, अखिलेश यादव एंड दे आर ग्रेट फ्रेंड्स।
3: यू नो पद्मजा, आई ऑलवेज बिलीव दैट पॉलिटिक्स is about winnability more than anything else. Do you think Akhilesh Yadav will not look at the fact that the Congress party was given 61 seats by Tejaswi Yadav to contest in Bihar and the Congress won only 6 seats with a strike rate of 9.8%? Do you think Akhilesh Yadav is not going to look at the Congress party's pathetic track record in Jammu Kashmir, where BJP swept the Jammu region and Omar Abdullah swept the Kashmir region and Congress was reduced to nothingness? Do you think Akhilesh Yadav will not look at the fact that the Congress backstabbed DMK and went and sat in the godi of PVK despite having a pre-poll alliance with the DMK? Khanjar bhoka hai.
4: Padmaja ji, I think there is so much
0: possibility. Okay, you know, maybe they will look at all of that, but then they will also look at 2024 and they will see the looming prospect of the BJP and they will decide that a enemy's enemy is their friend and they get together on that cycle. But let's see what happens to Imran Masood in the interim. For the time being though, all gentlemen and Sanju Verma, thanks very much for joining me. Thanks for watching, because remember, as always, when it really matters, the buck stops here.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हवा और पानी रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर बोल्डर मोर रेस्टलेस इट डजंट स्टॉप Neither do we. NDTV. When it really matters.
5: मैम आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का अगर संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता। हम बीजेपी से हैं मैम। बताइए हम आपके बच्चे नहीं हैं।
6: Jharkhand's Gen Z asked for their rights. Jharkhand's Gen Z didn't give up.
7: ये मैं आपको दिखाऊं देखिए ये लाठी चार्ज हो रहा है रांची पुलिस की टीम जो है इस पूरे इलाके को खाली करा रही है।
6: And neither did we.
8: वहाँ पर मजदूर के बच्चे बैठे हैं, गरीब के बच्चे बैठे हैं।
9: आप एक बार आपको तो बात करते हैं स्टूडेंट से।
5: रांची में कितना दूर है सर?
6: The battle in Jharkhand is won, but their war continues.
10: And it is time for them to be heard. Young people, those who have been demanding a better future.
6: NDTV stands with the students, because when it really matters, the buck stops here.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा प्योर मसाला।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: आई एम इन अहमदाबाद गिफ्ट सिटी टुडे। फ्रॉम द लेंस ऑफ द रेगुलेटर, हाउ क्लोज डू यू थिंक यू आर एट दिस मोमेंट टू अचीविंग द ड्रीम ऑफ बीइंग सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क और लंदन व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंस?
9: व्हाट आर ग्लोबल इन्वेस्टर्स लुकिंग एट? पॉलिसी स्टेबिलिटी, देयर इज लीगल सर्टेनिटी एंड देयर इज आल्सो अ टैक्स सर्टेनिटी। इन द लास्ट 5 इयर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रीटी मच पुट इन प्लेस ऑल दीस थिंग्स। आवर रेगुलेशंस आर नाउ बेंचमार्क टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
8: लेट्स टेक द पासपोर्टिंग ऑफ केवाईसी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स। इवन दैट डजंट सीम टू बी एज इजी एज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल बैंकर्स एक्सपेक्ट।
9: वी आर आल्सो डूइंग अ पायलट फॉर अनअसिस्टेड आधार फेस ऑथेंटिकेशन फॉर एनआरआई।
8: यू हैव सीन दिस model operate internationally. How far has India been able to evolve with GIFT City till this moment in time?
10: Started as a place for corporates, now wealth managers, individuals, private banking, a lot is happening.
8: Which are the instruments that you think that have now come up around GIFT City in a way that people really need to know it, and if they don't, they're missing out?
10: Let's say you're going to travel. Why do you want to pay a markup on your money you spend out?

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थोर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
6: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है ये।
7: कुछ इससे भी अनोखा
6: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
8: आई एम इन अहमदाबाद गिफ्ट सिटी टुडे। दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्रीम ऑफ बिल्डिंग एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। नाउ थिंक वी रीचिंग अ पॉइंट वेयर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेटर्स आर द वंस चेजिंग गिफ्ट सिटी।
9: बिगन देयर वर जस्ट अबाउट 100 रजिस्ट्रेशंस, टुडे इट्स क्लोज टू 1250।
8: Always be that tension between your aspiration for GIFT City and the reality of Gujarat being a dry state.
9: Within the regulatory framework, everything what would be available outside the state is available.
8: I've been seeing that Edelweiss has been doing a lot of work in and around the GIFT City.
10: I think it's like making an investment in the MF business of 20 years ago.
8: Okay.
10: And hopefully 20 years later, we can say GIFT is what mutual fund is today.
8: How has customer adoption been, and how are these products which you are operating out of GIFT faring versus what you do outside?
10: We want this to be a destination for NRIs coming into India via multi-manager. We are also enabling something else, Indians investing abroad.
5: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster.
8: I'm in Ahmedabad's gift city.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles.

0: करती हैं या नहीं कंसिडर करती हैं, ये मैं पूछ रहा हूं। इमरान मसूद और हमारे एमएलए दोनों दिमागी नक्सल हैं या नहीं, हाँ या ना?
1: नक्सल नक्सल भाई भाई ऐसा कह रहे हैं आप?
0: नहीं मैम, बीजेपी तो यही कहती है ना, ये सब लोग जो सवाल उठाते हैं, जो जनता की आवाज कर उठा रहे हैं, सब दिमागी नक्सल।
1: अच्छा देखिए, अभी दिमागी नक्सल में इसको आप ट्रैजेक्टरी चेंज मत कीजिए, बिकॉज अनकंफर्टेबल टाइम यू वांट टू चेंज इट, यू नो, एंड यू आर बेटिंग संजू वर्मा, सो शी क्विकली जंप्स इन एंड टेक्स द बेट एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट दिमागी नक्सल। बट बिफोर आई कम टू यू संजू वर्मा, सिंस ही हैज वेरी जेंटली आस्क्ड फॉर एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर आनंद रंगनाथन, बताइए डॉक्टर आनंद रंगनाथन।
2: नहीं नहीं देखिए, तारिक भाई मेरे बहुत अजीज हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर एडवाइस ही चाहिए तो मुझसे तो एक तो गलत आदमी से एडवाइस ले रहे हैं। पर मैं ये कहूंगा कि देखिए, दो लोग जो हैं वो पेट्रोल दे रहे हैं स्कूटीज में दे रहे हैं यूपी वालों की, और जब यूपी वाले की पेट्रोल के पास पेट्रोल स्टेशन पे पंप स्टेशन पे स्कूटी आती है तो एक राहुल गांधी है जो पीछे ऐसे कहते हैं जीरो चेक कर लो। आपकी चिंता यह है कि ये जो होज जिसके हाथ में पकड़ा है वो अखिलेश यादव तो नहीं है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, इसके बाद मैं एक मिनट और लूंगा पद्मजा जी से, लेकिन आप बस ये बताइए, मुझे पता है आपको खौफ किस बात का है तारिक भाई, अपने अंदर अगर आप झांक के देखेंगे, आप मेरे को पता है आप एडवाइस मांग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। What you are worried about is, will the Congress do to you what it did to DMK? और मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि जो तमिलनाडु में कांग्रेस ने किया कि प्री पोल DMK के साथ थे, 4-5 सीटें जीती बिकॉज DMK ने उनको अलाउ कर दिया वो सीट जीतने के लिए, उसके बाद उनको छोड़ के वो पोस्ट पोल अलायंस बना के गवर्नमेंट में है, क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने किया तमिलनाडु में ठीक किया, हाँ या ना बता दीजिए बस।
1: तारिक खान
0: रंगनाथन भाई पता है 77 में पहली बार गठबंधन वाली राजनीति शुरू हुई है ना, उसके बाद ना इतना गोला बना है, इतने लोग इधर गए उधर गए उधर गए फिर उधर गए, अगर ऐसे ऐसे कर
1: गोला तो ठीक है, कांग्रेस तो नहीं गोल हो जाएगी और आप गोल सब छोड़ देगी,
0: इसमें सब
1: अलायंस करना सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा।
2: सीधा सवाल था तारिक भाई, तमिलनाडु में कांग्रेस
0: यही तो कह रहा
2: हूँ गलत किया, सीधा सवाल था। नहीं अब आप जवाब नहीं देना चाहते, मैं समझ रहा हूँ, हाँ या ना का जवाब
0: मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, नहीं हाँ या ना नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि लोग बहुत इधर उधर हुए, इस पे कहां तक डिस्कस करेंगे हम, कितना हुए। जॉनसन ये तो हमारे साथ ही थे 77 में, जनता पार्टी में विलय किसने किया, सब थे उसमें, हम भी थे, ये भी थे, बीजेपी वाले भी थे, तब कांग्रेस उधर थी, अब घूम के ऐसे आ गए। 67 में भी यूपी में गठबंधन बना, उसके बाद कितने लोग अटल बिहारी वाजपेयी पता नहीं कितने लोगों को सरकार ले लेके
1: बनाए।
2: नहीं देखिए, हम इसके अगर क्रक्स तक जाएंगे, अगर इसकी बोटी बोटी अलग करेंगे तो जो इमरान भाई ने जो कहा है वो खौफनाक इसलिए है समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि उनको ये दिख रहा है, राइटिंग इज ऑन द वॉल। एक अब आई एम ऑनेस्टली पद्मजा, वन मोर विंडो शुड हैव बीन देयर ऑफ डीएमके पैनलिस्ट, ही वुड हैव सेट द एंटायर थिंग क्लियर एज डे, बिकॉज इट इज क्लियर टू मी ऑलरेडी, कांग्रेस इज गोइंग टू डिच समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की 6-7 सीटें ऐसी होंगी जहां पे वो जीत सकती हैं, लेकिन वो कांग्रेस को देंगी कि चलो भाई तुम जीत जाओ। अब कांग्रेस जब जीत जाएगी वो समाजवादी पार्टी,
0: आप चाहते हैं समाजवादी पार्टी जीते, आप चाहते हैं समाजवादी पार्टी जीते, आप चाहते हैं समाजवादी पार्टी जीते, आप ये चाहते हैं,
2: क्यों चाहूंगा कोई जीते कोई हारे,
0: अभी मुझसे तो हारा ना, अभी तो मुझसे हाँ या ना मांग रहे थे क्या भाई रंगनाथन साहब, दोस्त भी कहते हो।
1: ओके, लेट मी ब्रिंग इन संजू वर्मा हियर, लुक तारिक खान विल फिगर आउट व्हाटएवर हिज प्रॉब्लम इज विद कमलाकर त्रिपाठी, बट बीजेपी शुड नॉट बी हैप्पी इन दिस, यू गॉट एनफ प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन। एवरी डे अखिलेश यादव कीप सेइंग कि यहाँ पे दो चक्के हैं, एक दिल्ली का है एक लखनऊ का है, दोनों आपस में टकराते रहते हैं, लखनऊ में भी दो चक्के आपस में टकराते रहते हैं, इफ यू एवर टॉक टू ब्रिजभूषण शरण सिंह ही विल नॉट हैव वन काइंड वर्ड टू से अबाउट योगी आदित्यनाथ। संजू वर्मा,
3: यू नो पद्मजा जी, पहले तो यू से संजू वर्मा इज क्विक टू टेक द बेट, अरे भाई डिबेट करने आए हैं, मुंह पर ताला लगाकर बैठने के लिए थोड़ी आए हैं। इफ समबडी इज थ्रोइंग द गॉन्टलेट, आई एम ऑल फॉर द चैलेंज, नाउ इफ दैट इज कॉल्ड टेकिंग अप द बेट, आई ग्लैडली एक्सेप्ट दैट यू नो एलिगेशन, बट नाउ लेट मी कम स्ट्रेट टू द इश्यू वेरी क्विकली। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव, समाजवादी पार्टी एक्चुअली रेज्ड इट्स वोट शेयर बाय ऑलमोस्ट 11%। Despite that, they were limited to 111 seats. What am I trying to say? I always say that BJP's biggest strength is the ability to convert vote share into winnable seats. And while the difference in vote share between BJP and any leading opposition party in a given state may not be very large, the opposition fails to convert vote share into winnable seats. That's point number one. Point number two. Today, Imran Masood of the Congress versus Ashu Malik of the Samajwadi Party.

0: couple of years back, it was, Ajay Rai versus Kamal Nath. Then it was Kamal Nath versus Ram Gopal Yadav. और यहां तक कि पिछले साल अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चिरकुट बोल दिया था, कहा था कि इनमें तो चुनाव जीतने की क्षमता ही नहीं है. सो हैव द समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी बिन एट लॉगरहेड्स विथ ईच अदर? यस. द थर्ड पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज दिस. आई विल ओनली कोट टू एग्जाम्पल्स. वन इज नवंबर 2024 बाय इलेक्शंस टू 9 सीट्स इन उत्तर प्रदेश. द कांग्रेस वॉन्टेड ओनली 3 फ्रॉम द समाजवादी पार्टी, इट रिफ्यूज. Then the Congress withdrew and Samajwadi Party fought all the 9 by-elections on its own strength. The BJP won 7 out of those 9 with a strike rate of 78%. The Samajwadi Party won 2 out of 9 with a strike rate of only 22%. So my third point is that the Samajwadi Party and the Congress continue to be at loggerheads, and when push comes to shove, they have not been able to converge to take on the BJP. And my final point is this. सबसे अहम चुनाव 2025 में was the मिल्कीपुर बाय असेंबली इलेक्शन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, where अवधेश प्रसाद, the man who supposedly defeated BJP from its bastion in अयोध्या / फैजाबाद, अवधेश प्रसाद son अजीत प्रसाद was defeated in मिल्कीपुर by BJP's Chandrabhanu Paswan. And why I say Milkipur is a mirror image of Samajwadi party not getting its plot together is simply because Milkipur mein 16-17% Brahmin hai. Ek minute. Milkipur mein 16-17% Dalit hai. Milkipur mein 35-40% OBC hai. So Milkipur is a cosmopolitan constituency where the Samajwadi party could not win.
1: Okay.
0: And the BJP won by a margin of 62,000 votes. What does that tell you? It tells you that 2027 mein wahi hoga jo 2022 mein hua aur 2017 mein hua. अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो चुकी है.
1: पर ये तो बता दीजिए, समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस के पकोड़े झगड़े में आपकी सिंपथी किसके साथ है?
0: मेरी सिंपथी?
1: हाँ,
0: मेरी सिंपथी किसी के साथ नहीं है. दोनों आपस में लड़ लड़कर they are going to reduce each other to oblivion.
1: Okay, Kamlakar Tripathi, Sanju Verma is predicting oblivion for you. अभी तो आपका कम हुआ है, जितना आप झगड़ा और करेंगे खुद ही अपने अलायंस के जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं आप.
2: पद्मजा जी, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, डोंट ट्राई टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. इट वॉज अ नथिंग काइंड ऑफ अ इंसिडेंट. That was a Disha meeting in which Ibrahim Masood was presiding and Ashu Malik was raising something, and he said that after that let it complete the other person, the other member, and we will do it, and both of them have explained it. और दूसरी चीज आपको बताऊं,
1: सर ये मोलहिल तो हमने अखिलेश अखिलेश में भी देखा था. When Kamalnath had called अखिलेश जी himself अखिलेश अखिलेश.
2: एक मिनट.
1: So you are digging up these moleheads. What can I do?
2: Padmaja ji, don't interrupt me.
1: Yes, go on.
2: Just a minute. I am coming to the point. Another thing. BJP जो आज कर रही है वो ये है कि आपन पूर्वांचल की एक कहावत है, आपन ढेंढर न निहारे आन क फुल्ली ताके. I tell you what a dispute is, what a loggerhead is. जब संत कबीर नगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शरद त्रिपाठी इसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जूता निकाल करके बीजेपी के ही वहां के एमएलए राकेश सिंह बघेल को मारते हैं, दैट इज गोइंग इन लॉगरहेड. दूसरा आपको इंसिडेंट बता दूं, ये जो आपके पीलीभीत के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक के पिता राम शरण वर्मा, उन्होंने क्लियरली कहा ओपनली मीडिया में कि योगी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है, इनसे बेहतर तो मायावती जी थी. और जो अभी जो गोपाल नंदन जी जो बोल रहे थे, मैं उस पर भी आपको बता देना चाहता हूं, ये जो टैक्टिस जो लोगों को डिच करने की है वो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कौन कर सकता है?
1: ओके, वेरी गुड. संजू वर्मा रिस्पोंडिंग डॉक्टर रंगनाथ.
2: पहले उनके पहले
0: आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना भाई साहब. यू नो पद्मजा जी, लेट
2: पारस को ले लिया, उसके बाद पशुपति पारस को डिच किया.
1: ओके, फाइट्स हैपन एवरीवेयर. संजू वर्मा रिस्पोंड स्पेसिफिकली टू दैट. संजू वर्मा, फाइट्स हैपन एवरीवेयर.

कांग्रेस प्रवक्ता के लिए यह कहना चाहूंगी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है।

0: हिल सेज कमलाकर त्रिपाठी।
1: नहीं नहीं देखिए, कमलाकर जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, त्रिपाठी जी हैं, लेकिन ये चौथा पार्ट लगता है भूल गया ना। बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखिए ये वॉटअबाउटरी को ऐसे एक्सट्रीम तक ले गए कमलाकर जी कि जो और लोग लड़े हैं हिस्ट्री में उनकी पूरा चिट्ठा पत्ता खोल दिया। अब ये टीपू सुल्तान को भी लाएंगे, बाबर को भी लाएंगे, ये देखो उससे लड़ा था, ये उससे लड़ा था। बात आपकी लड़ाई की हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने जो
2: पंडित नेहरू तक जा रहे हैं,
1: मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको
2: आपके 2 साल पहले का भी बताना बड़ा मुश्किल हो।
1: सुन लीजिए कमलाकर
2: जी, जब चीजें खुलती हैं तो सबकी खुलेंगी।
0: अरे त्रिपाठी जी, गोपाल जी की बात तो सुन लीजिए 2 सेकंड के लिए।
1: सुन लीजिए, गोपाल नंदन बहुत ही प्यारा नाम है, इट्स सो क्यूट। नो, मैं अपने आपको आनंद गोपाल नंदन कहने वाला हूं। देखिए, इन्होंने महाविकास अघाड़ी कैसे बनाई, कुत्ते बिल्ली की तरह ये उन्हीं पार्टी से लड़ रहे थे, एनसीपी को वोट मत दो, शिवसेना को वोट मत दो, और इलेक्शन के बाद क्या किया, पोस्ट पोल अलायंस डीएमके के साथ तमिलनाडु में क्या किया, 7 अलायंस था, उसके बाद लड़ रहे थे बाकी और पार्टियों से, और अब कांग्रेस अब सरकार बना दी है। तो जो जो कांग्रेस के साथ है वो एक आंख खोल के सो रहा है पद्मजा।
2: आपने पशुपति पारस और उसके साथ क्या किया था ये बता दीजिए।
1: अब ये
2: भारतीय जनता पार्टी ने पहले पशुपति पारस को लिया, फिर उनको डिस किया, वहां इनको ले लिया,
1: वो गलत है, आप गलत है कि नहीं,
2: कुमार को लिया,
0: पासवान को,
2: उनको डिस किया, ओम प्रकाश राजभर रोज गाली देते हैं और उसके बावजूद जो है वो अलायंस वो होते हैं। मैं लॉगर हेड आपको बता रहा हूं क्या होता है आज की डेट में। पद्मजा जी, द पोजिशन ऑफ बीजेपी इज कि नीदर द पेजेंट्स जो किसान हैं वो इनके खिलाफ हैं, जो महिलाएं हैं भाजपा से बेटी बचाओ की स्थिति हो।
0: ओके फाइन, बट कमलाकर जी, माय ओनली हम्बल सबमिशन टू यू इज द मोर यू आर गोइंग टू पुश द समाजवादी पार्टी अगेंस्ट अ वॉल, द मोर एक्टिवेटेड यू नो इमरान मसूद गेट्स। देयर इज आल्सो असदुद्दीन ओवैसी वेटिंग इन द विंग्स, वो तो 2-3 बार डोरे डाल चुके हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आप हमारी तरफ आ जाइए।
2: दूसरे देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं पद्मजा जी, हमारा आपस में क्या है। पहली चीज आपको बता दूं, न इमरान मसूद चीजों को फाइनल करने वाले हैं, ना आशु मलिक फाइनल करने वाले हैं, ना रेहान जी फाइनल करेंगे, ना मैं करूंगा, वो तो पार्टी हायरार्की करती है।
0: अरे सर, उनका नाम तारिक तारिक खान है, आपने उनको रेहान क्यों बना दिया, उनको गोपाल नंदन बना दिया।
2: के दोनों युवा नेतृत्व जो है वो साथ में थे।
0: इस शो पे नामकरण सबका हो गया है, बट थैंकफुली संजू वर्मा रिमेन्स संजू वर्मा। यस, फाइनल वर्ड टू यू, यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी रेहान और गोपाल नंदन हु डिसाइड्स द अलायंस, इट्स गोइंग टू बी राहुल गांधी, अखिलेश यादव एंड दे आर ग्रेट फ्रेंड्स।
3: यू नो पद्मजा, आई ऑलवेज बिलीव दैट पॉलिटिक्स is about winnability more than anything else. Do you think Akhilesh Yadav will not look at the fact that the Congress party was given 61 seats by Tejasvi Yadav to contest in Bihar and the Congress won only 6 seats with a strike rate of 9.8%? Do you think Akhilesh Yadav is not going to look at the Congress party's pathetic track record in Jammu Kashmir, where BJP swept the Jammu region and Omar Abdullah swept the Kashmir region and Congress was reduced to nothingness? Do you think Akhilesh Yadav will not look at the fact that the Congress backstabbed DMK and went and sat in the godi of PVK despite having a pre-poll alliance with the DMK? Khanjar bhoka hai.
2: Padmaja ji, I think there is so much
0: possibility. Okay, you know, maybe they will look at all of that, but then they will also look at 2024 and they will see the looming prospect of the BJP and they will decide that a enemy's enemy is their friend and they get together on that cycle. But let's see what happens to Imran Masood in the interim. For the time being though, all gentlemen and Sanju Verma, thanks very much for joining me. Thanks for watching, because remember, as always, when it really matters, the buck stops here.